और प्रोग्राम में रहा सुनने वालों, मिस्टर बाबू सुप्रियो जी की मीठी आवाज में हमने ये खूबसूरत सा गीत पेश किया है, एक प्यार का नगमा है।

और ये रहा आज के कार्यक्रम में मिस्टर उमर वागित हुसैन की आवाज में आप सभी म्यूजिक लवर्स के नाम हमने पेश किए ओवर द पावर ऑफ लव अमर एफएम के जरिए। चलते हैं बढ़ते हैं आपको लेकर कुछ और गाने हमने चुन कर रखे हुए आज के कार्यक्रम में, तो क्यों ना ये भी हो जाए आज के प्रोग्राम में आप सभी के नाम।

चलिए सुनो लो, ये रहा मिस्टर संजय जोधा प्रोग्राम में जो ये खूबसूरत सा गीत हमने पेश किए है आप तमाम सुनालों के नाम, खास करके हमारा तमाम लॉफर्स के नाम जो इस वक्त के साथ अमर एफएम के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। चलिए इसके बाद हम आपको लेके बढ़ चलते हैं मिस्टर उमर बागी हुसैन जी की आवाज में कि थोड़ा सा प्यार हुआ है और अभी थोड़ा से है बाकी और पूरा कब हुई ये गीत हम लोग मिल करके सुनेंगे। चलिए सुनते हैं और पूरा के पूरा प्यार भी हो जाए।

और ये रहा आज के प्रोग्राम में मिस्टर उमर वागित हुसैन की आवाज में आप सभी म्यूजिकल ऑफिस के नाम हमने पेश किए ओवर द पावर ऑफ लव अमर एफएम के जरिए। घर की तरफ देखा जाए तो काफी रात हो चला है और आज जैसे मैंने आप लोगों से कहा ना तो है 2 मई 2026 और हो चला है इनमें 10:18 होलैंड में। चलते हैं अगला गाना की ओर।

एक बार फिर हम शामिल करते हैं मरहूम नदीम खान जी को और ये एक लाइव रिकॉर्डिंग है, जबकि नदीम खान स्टेज पर शो दिया था और म्यूजिक दिए है म्यूजिक ग्रुप द इंडियन डायमंड्स का। तो चलिए ये गीत मिलकर के सुनते हैं मरहूम नदीम खान की आवाज में।

जैसे आप सबको मालूम है, पता है, तो हर रोज हमारा हिस्सा का प्रोग्राम जब भी हम शुरुआत करते हैं 4 बजे, तो गजल के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हमेशा शुरुआत होते है। 4 से 5 बजे तक गजलें होगा और 5 बजे से 6 बजे तक तो भजन के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम आगे जारी करेंगे। तो घड़ी की तरफ देखा जाए तो भी थोड़ा सा वक्त मेरे पास, लगभग 3 मिनट। तो 3 मिनट के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल होगा और इंस्ट्रूमेंटल के बाद हम आप लोगों से मिलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया, गजल के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम आगे जारी करेंगे। तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंटल होगा।

शेर इसमें पेश कर रहा हूँ महेंद्र सिंह बेदी साहब का, जो फैज़ अहमद फैज साहब के बड़े चहेते दोस्तों में से थे और बहुत प्यार करते थे फैज साहब उनको। मुझे उन्होंने फरमाया था कि भाई ये मेरे दोस्त हैं और ये इनके शेर, ये शेर ज़रूर मेरी गज़ल में पेश किया करें, मुझे पसंद है ये शेर।

एक बार फिर से आप सभी सुनोलो को हम कहते हैं खुदम और वेलकम तुरख। आज है 7 2 मई 2020 और सुबह के कार्यक्रम से आप सब जुड़े हुए हैं और यहाँ से जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया कुछ गजलें होगा अब से लेकर करीबन 5 बजे तक। तो एक से एक अच्छी अच्छी गजलें मैंने चुन कर रखे हुए आपकी आज की प्रोग्राम में। तो चलते बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला गजल की ओर। आज की सुबह के प्रोग्राम में प्रस्तुत होते हैं आप सभी और सभी गजल संगीत प्रेमियों के नाम। ये खूबसूरत सा गजल लाया जा रहा है आज की सनीचर के सुबह के कार्यक्रम में।

अमर एफएम के प्रोग्राम है सुलौलो। सनीचर के सुबह के कार्यक्रम से आप सब जुड़े हुए हैं अमर एफएम नई दलान से बोलते हुए, और ये एक प्रोग्राम है जो कि लाइव एंड डायरेक्ट आप सभी सुलौलो की सेवा में पेश होते हैं अमर एफएम नई दलान। तो चलिए बढ़ चलते हैं आपको लेकर एक और खूबसूरत सा गजल आप सभी सुलौलो की सेवा में हम पेश करते हैं अबीदा प्रवीण जी की मीठी आवाज में। आज की सुबह में मिल करके सुनते हैं, प्रस्तुत करते हैं खास करके उन लोगों की नाम जो इस वक्त के साथ अमर एफएम के प्रोग्राम से, अमर एफएम के पैगाम से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के नाम ये सुंदर सा गजल हम प्रस्तुत करते हैं।

और प्रोग्राम में रहा अबीदा प्रवीण जी की मीठी आवाज में ये सुंदर सा गजल मिल करके हम लोगों ने सुने आज की सुबह में। इसके बाद में हम आपको लेके बढ़ चलते हैं गुलाम अली साहब की मीठी आवाज में आज की सनीचर की सुबह के कार्यक्रम में मिल करके सुनते हैं।

करूं। शेर है आ गया अगर वसल की शब, वसल की शब मैंने मिलने की शब, शब मैंने तो रात होता है, मिलाप मैंने वसल होता है, और फिराक मैंने जुदाई होता है।

जारी करते हैं आज की सुबह के प्रोग्राम में एक आखिरी गजल की ओर हम आपको लेके बढ़ चलते हैं और उसके बाद में कुछ भजन हम आप सभी सुनने की सेवा में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये गजल मिल करके सुनते हैं।

बढ़ चलते हैं आपको लेकर आज की सुबह के कार्यक्रम में वादा के मुताबिक भजन की ओर। और भजन पहला शुरुआत करते हैं एक अति सुंदर गणेश जी के भजन के साथ में आज की सनीचर की सुबह के कार्यक्रम में अमर FM नीदरलैंड के जरिए प्रस्तुत करते हैं आप सभी और सभी भक्त प्राणियों के नाम।

हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, क्योंकि श्री गणेश विघ्न विनाशक और मंगलकारी हैं। जो कोई गणेश भक्त गणेश विवाह की ये शुभ कथा पूर्ण भक्ति भाव से सुनता है, उसके जीवन में आने वाले समस्त विघ्न नष्ट होते हैं। इतना ही नहीं, गणेश वधु रिद्धि सिद्धि की कृपा से उसे हर कार्य में मनोवांछित सिद्धि तथा समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश विवाह की कथा का सूत्र शिव पार्वती की चिंता से प्रारंभ होता है। जब गणेश जी विवाह के योग्य हुए तो उनके माता पिता शिव पार्वती को गणेश जी के विवाह की चिंता सताने लगी, परंतु गणेश जी लाख मनाने पर भी विवाह के लिए तैयार ना हुए। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर विवाह की बात टालने लगे। गणेश जी को विवाह के लिए मनाने का और कोई उपाय न देखकर पार्वती के कहने पर शिव जी ने नारद जी को याद किया और उनसे अपनी चिंता कह सुनाई। चतुर नारद जी ने शिव पार्वती को आश्वासन दिया कि गणेश विवाह की चिंता वे उन पे छोड़ दें। फिर अचानक नारद जी को एक युक्ति सूझी। उन्हें पता था कि द्वारका में श्री कृष्ण के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। वे पलक झपकते ही द्वारका पहुंच गए। श्री कृष्ण ने नारद जी का स्वागत किया और बारात में चलने के लिए कहा, परंतु नारद जी ने श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहा, प्रभु, द्वारका के सभी पुरुष जब आपकी बारात में चले जाएंगे तो यहां की नारियों की रक्षा कौन करेगा? इसके लिए आपको ऐसे किसी योद्धा की व्यवस्था करनी होगी जो अकेले ही द्वारका की रक्षा कर सके, और वे योद्धा गणेश जी ही हो सकते हैं। और श्री कृष्ण तुरंत कैलाश जाकर गणेश जी को द्वारका ले आए। गणेश जी के द्वारका आते ही नारद जी ने अपनी सोची हुई युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने गणेश जी के पास जाकर चुटकी ली। भोले गणेश जी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने द्वारका में बिठाकर आपको मूर्ख बनाया। भला भगवान कृष्ण को किस शत्रु का डर हो सकता है? ये तो आपको अपनी बारात में ना ले जाने का बहाना है, ताकि आप भी वहां सुंदरियों को देखकर विवाह की हठ न ठान बैठें। और फिर धीरे से उनके कान में कहा, विघ्न विनाशक, कुछ ऐसा करो जिससे कृष्ण जी की बारात आगे ही न बढ़ने पाए। फिर उनको सहायता के लिए आपके पास ही आना पड़ेगा। उस समय उनसे कहना, आप विवाह करें और मैं कुंवारा बैठा रहूं, ये कैसे हो सकता है? गणेश जी नारद जी की बातों में आ गए। उन्होंने अपने वाहन चूहों की सेना भेजकर बारात का रास्ता नीचे से खोखला करवा दिया। जैसे ही कृष्ण जी की बारात उस रास्ते पर आगे बढ़ी, धरती में धस गई। बड़ी कठिनाई से बारात के लोगों, हाथी, रथ, घोड़ों को बाहर निकाला गया। श्री कृष्ण जी समझ गए कि ये चाल नारद जी की है। उन्होंने तुरंत बलराम जी को गणेश जी को समझाने के लिए भेजा। गणेश जी ने कहा, पहले मेरा विवाह कराने का वचन दो, तभी मैं अपने वाहन चूहों से कहकर खोखली सड़क को ठीक करवा दूंगा। बलराम जी को गणेश जी की बात माननी पड़ी। रास्ता ठीक होते ही गणेश जी की बारात आगे चली और श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे। इस तरह नारद जी ने शिव पार्वती की चिंता दूर की और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दूल्हा बने। जो कोई व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से गणेश विवाह की ये मनोहर कथा सुनता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। धन वैभव से उसके भंडार भरे रहते हैं। गणेश जी की कृपा

भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हम पेश करते हैं आज की सनीचर के सुबह के कार्यक्रम में। यही आशा करते हैं कि जितने ही भजन आपको मिलता है सुनने के लिए आज की सनीचर की सुबह के कार्यक्रम में आप लोग सुन करके अवश्य पसंद भी करते हैं। बढ़ चलते हैं आपको लेकर अगला भजन की ओर। जबकि सनीचर है तो एक सनीचर के भजन मिल करके सुनते हैं आज की सुबह के कार्यक्रम में अमर एफएम नई दलान के।

अति सुंदर माता जी के भजन मिलकर के हम लोगों ने सुने आज की सनीचर के सुबह के कार्यक्रम में। यही आशा हम करते हैं कि हमारा हिस्सा का प्रोग्राम जो आज हमने पेश की है सातरदा त्वे मई त्वे दसंता सुनकर आप सब पसंद किए, खास करके हमारा हिस्सा का प्रोग्राम सुबह में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक गजलें हमने पेश किए और 5 बजे से लेकर अब तक कुछ भजन के साथ आप सभी सुनालों की सेवा में हमने पेश किए, प्रस्तुत की है। तो यही आशा हम करते हैं कि हर रोज की तरह आज भी हमारा हिस्सा का प्रोग्राम आप सब पसंद किए। बाकी के जो प्रोग्राम हैं सुनते जाना। हमारा कुलेखा जो है सेविका जयंती पाटादीन जी स्थिति में आ गई है, तैयारियां में लगे हुए, अभी चंद घड़ी के अंदर में प्रोग्राम वो टेक ओवर करने वाली है। हम मिलेंगे आप लोगों से कब और कितने बजे, बस अमर एफएम के प्रोग्राम बेशक सुनते रहना। आज के लिए, सुनने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा मरखन, एंड फॉर स्ट्रक्स फील एस प्लसर मैं कुलेखा जयंती पाटंदी जी। बाय बाय, स्वाय स्वाय, खुदा मरखन, विजय असरफी प्रोग्राम को पेश किया।

0: छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी की साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी तो जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, खुश रहो।
1: हर हाल में खुश रहो।

देन हाग से मंदिर सेवा धाम की ओर से यह अति सुंदर भजन आपके लिए आपके नाम अस्वी

अति सुंदर भजन आपके लिए आपके नाम देनहा से मंदिर सेवा धाम की ओर से। श्री राम मंदिर और युवलीर हाउथ सर्विस की ओर से देनहा यह अति सुंदर भजन।

सुंदर भजन अर्थ देनहाख नामंस श्री राम मंदिर और युवलीर खौसर्फिस की ओर से।

फ्लार देंगन से नामंस श्रीनंदा देवी मंदिर की ओर से आनंद जी महाराज जी, यह अति सुंदर भजन आपके नाम आपके लिए आज के शुभ में आपके लिए।

सुंदर भजन आपके नाम आपके लिए नामंस स्टिफ्टिंग अपना एन आनगस्लोटन ऑर्गेनाइजेशंस एन स्टिफ्टिंग सच्चे धर्म uit Hoogvliet.

बाबा तेरे भरोसे लोसरार्स आपके नाम आपके लिए आज दनहाख परिवार देव मंगल की ओर से और आज दनहाख संध्या रेसन नामंस धीर बोयक सुखाई जी namens Stichting Hindu Onderwijs in Nederland, de Shon, en de 5 aangesloten scholen uit Amsterdam, de Sri Lakshmi School, Almere de Sri Ganesh School, Utrecht de Sri Krishna School, Den Haag de Sri Vishnu School en uit Rotterdam de Sri Saraswati School. Deze prachtige Saraswati Vandana.

रोटरडम साइट से माता श्री धर्मदे शिवपाल बाल गोविंद और सभी लड़कन की तरफ से ये सुंदर भजन।

सुंदर भजन रोतडाम साउथ से माता श्री धर्मदेई सिउपाल बालगोबिंद और सभी लड़कन की तरफ से।

अति सुंदर भजन आपके नाम आपके लिए अयोध सूत्रमेर नामंस माता श्री एस महादेव अर्जुन शर्मा और सभी लड़कन दमाद बहु क्लैन केंद्रन एन अख्तर क्लैन केंद्रन Namens Anand Arjun Sharma en Zunda BV deze prachtige Mata Bhajan.

0: मने
1: राजीव गोविंद राइस हाउस कैसे बांटो आप राइसन हाउस कैसे बांटो आप मने राजीव गोविंद
0: जयंती जी
1: हाँ
0: हम तो आपके आवाज और जितना खुश देते हो उसको तो जवाब ना है हमारे पास
1: हाँ
0: बाकी नहीं अमोर है जो कन हम ओकर एगो नाम मांगती है धरे
1: हाँ
0: ओकर नाम हम धरे मांगिल अमर
1: अमर मोमेंचे छा मोमेंचे मने सी गो बिंत एगो और हम व्हाट्सएप लाइन ले ली छा मोमे
0: अच्छा
1: और खिंग नेट मिस Nee, ik denk dat het misging. Het is, ja, we doen het straks wel. Ha? Amar, Amar, ne?
0: Amar rahe sada ye amor.
1: Amar rahe, cha cha. Acha bollo, ha ha ha.
0: Kaise hai aap?
1: Ha, mooi, bas apan mane siye gobind. Aaj jaiye kuch chale aale bahar hai?
0: Ha, tab hum yahi vichar karela apne kisani ke khete mein jaake.
1: Ha?
0: Wahi hamar 70 saal se hamar hobby hai.
1: Acha.
0: Naam se leke yahan tak
1: अच्छा मोई मोई अच्छा मोई हम एगो गनवा रखली बाटी तत्तु हम मांगेला कि खातत लुक दत यू इट खात राड
0: ओके दो मार
1: ए गा प्रोबेरे कैके ऑफ इट लुक्ट
0: या
1: ए गा कैक टू वन इस एन डुएट फन आशा जी एंड रफी जी
0: बहुत मोइलक वाला दिमाग के बाहर है
1: या अच्छा हम आपके लिए और आपके पत्नी के लिए ड्राई कर देव छा
0: खाली हमरो हमले दुनु खातिन नहीं सारा
1: सारा संसार खातिन हाँ
0: और जोन एकवा दाई हमारा इच्छा पूरा कर लो सिराज भत्तू जो ने उसे हम बहुत ज्ञान के बात करिया
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो हम ओकर हाथ भी ड्राई कर दे और सारा संसार का सब लो इस तरह का
0: भाई का भत्तू नाम तो बहुत है देवी जी
1: हाँ
0: लेकिन जे जे सुने दुनिया भर यहाँ से लेकर श्रीनाम त्रिदात अमेरिका मुझे नहीं मालूम है
1: अच्छा धनी बाबा वक्ती मेरे को तरवा और ले लेला अच्छा वक्ती मोमेंट अच्छा मैं तो अमोर एफएम गुड मॉर्निंग
2: Een hele goede morgen, Jantien.
1: Goedemorgen, mevrouw Bidia Gogar uit Zwolle, denk ik, hè?
2: Ja.
1: Momentje, ik heb meneer Siego Bint aan de lijn. Ik ga hem even groeten. Meneer Siego Bint, mevrouw Bidia Gogar, waar ik wel een op heb.
0: Oh.
1: Groeten kan je ook, hè? Aap, groeten kan ze, hè?
2: Namaste, bhai. Namaste.
0: Namaste, namaste. Kaise ho?
2: अच्छा बढ़िया मैडम बोलो से बेल कर ली बाकी हम बोली देखी राजीव बहुत दुख है
0: क्या करे कोई सारा संसार में तो दुख है
2: भगवान के दया चाहिए अमोर बढ़ती जाए ना
0: हाँ देखो हम तो अमोर के हमेशा बोली ला हर एक इंसान के पास सब कुछ है लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ शायद कोई के पास ना हो
2: ना भाई
0: ओ सुनो हम वो चीज देला कि अपने दिल से आशीर्वाद देला ना सिर्फ अमोर के बल्कि सारा संसार के
2: ना बोल भाई हमार भाई आज अमोर के ना सुरनामा नहीं गला एकदम से उजिया रहेगा ये भगवान ऐसे सदा सुखी से रखे और आगे बढ़ते जाए
0: अबे तो भगवान चाहे तो एकाध महीना बाद हम लोग फिरन शस्त्रक्रियार हो हम लोग के विवाह भैले
1: ब्रायलोफ अच्छा धन्यवाद मनीष गोबीन तो हम आपके लिए अब सबका एक हाथ ड्राई कर दे गनवा अच्छा तो हम इफ मुफरा बीडिया से जाई बतिया ली छा
0: नमस्कार
1: धन्यवाद हाँ मनीष गोबीन हम आप एक बार दाइन हम आपसे पूछे बे कि कौन रेसेप्ट बा कि तू फिरन सस्तक यार इतना दिन साम बेंट यू मेट यू फ्रॉ द गा एक फ्राग कैसे तू कर ले सबको के चाहिए सुने कि कैसे तू फॉल हाउ करे इतना इट्स गेवेल्डिग गेवेल्डिग फॉर यू दैंक्यूवेल मनीष गोविंद
2: या आपको फेलिसिटेड वो मनी
1: अच्छा ओके यार हां मुफरा बिडिया कैसे बारे तू बड़ा दिन ना बेल करे मुफरा बिडिया तू कहूं लुकात है